0: समर का फासला फिर भी है दिल की करीबियां। देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio UK.

0: Mica Radio.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simsy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simsy app today. Simsy, your global flow. T's and C's apply.
4: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
5: अगर हम साथ हैं,
4: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
6: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
7: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड यप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
0: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: रेडियो।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio. ये है लाइका गोल्ड।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

ताहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अव

0: good.
1: Listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio.
2: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
1: Lyca Radio Network, broadcasting across the UK with Asian stations. Breakfast with Kajal.
5: Lyca Radio.
6: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: Good morning. एक और सप्ताह की शुरुआत संगीत के साथ, मनोरंजन के साथ। सोमवार वर्ष 2026 के मई महीने की 18 तारीख और मैं रवि शर्मा एक और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूँ। हर भाइयों, अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक कहीं ना जाइयो, जुड़ जाइए अपने लोकप्रिय रेडियो स्टेशन के साथ, लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड। चमकने को है धूप खुशियों की हर सू, सुना है कि मौसम सुहाना रहेगा, हंसी लुत्फ लेने जो गर्मी का निकले, नजर सेकने का बहाना रहेगा। हुई मेरी खातिर सदा जूतियों से, मेरे भाग्य में मार खाना रहेगा। जवां जब तलक है जवानी है जब तक, पुलिस स्टेशन भी आना जाना रहेगा। वही न रह पाएगा आज महफिल में कोई, रहेगा तो हंसना और हंसाना रहेगा, ठहाके लगाना रहेगा। जिंदगी बहुत छोटी है भैरव भाइयों, इसके एक एक पल का लुत्फ उठाना रहेगा। ये जिंदगी बारंबार नहीं, दुनिया के मजे लूटेंगे हम, खेलें कूदें हंसे मुस्कुराएं खुशियां बांटें, और कोई बात ना पूछेंगे।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Back to back hits across the Leica Radio network.
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, थोड़ी बहुत भाई मुश्किलों का भी होगा आना जाना, उबड़ खाबड़ रास्ते को वहां से भी हमें गुजर कर है जाना, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए मस्ती लुटाते हुए हमारे साथ जुड़ जाइए।

0: आज को जुनली रात। मामा, बंगाली शब्दों का समावेश जब गीतों में होता है तो ध्यान जाता है ना बंगाल की ओर। कई गीत ऐसे हैं जो हमें किसी प्रदेश की ओर, किसी लोक परंपरा की ओर खींच कर ले जाते हैं। एक और गीत है ऐसा ही, वो मेरे ढोलना, उसमें भी बंगाली टच है और पंजाबी टच तो जाप पूछो मत। हर गीत में कई, हर फिल्म में कोई ना कोई, अगर आनंद बख्शी के लिखे गीत होंगे तो पंजाबी टच अपने आप आ जाएगा उनमें। साहब, पहला गीत आज के कार्यक्रम में जो शामिल हुआ वो था नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाजों में, साथियों के साथ गा रहे थे खून भरी मांग, फिल्म का गीत, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन चलता रहे, वही ये कामना थी। और अभी जो गीत आपने सुना, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म तलाश, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। तो भाई, ऐसे बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हम प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं और फिर आपके सामने लाकर धरते हैं पाउंड का रेट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो नोट कीजिए साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, रेट अभी बुरा नहीं है। अगर आप लोगों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो भाई भारतीय करेंसी में वो एक पाउंड के बदले 127.50 रुपए दे रहे हैं मैक्सिमम। दैट्स 127.5 रुपीज मैक्सिमम। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Yeah. Like our radio.
3: The wait is now over. The King of Melody. Kumar Sanu live in concert. One night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
3: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
3: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: 105 shows pura karya pachi, have Lester ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
7: Jay's Entertainment line avi rahya chhe sakhna re jo husband ji.
6: Reena Shah ane Samir Shah saathe hasyano full dose. 28 June, People Center Lester ma be shandar shows. Bapore 8 vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B07. 7860-280-655 Mumbai Sandwich Station 078-3483-2249 Athwa eventbrite.co.uk Sakhna rejo, Hasbandji.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और मोहम्मद रफी व आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म राम और शाम का गीत, बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते। गीत में आपने थोड़ा सा वो फोक टच महसूस किया, जरूर किया होगा, पर नौशाद साहब की बनाई धुनों में शुद्ध भारतीय टच होता है, उसमें भी लोक परंपरा से जुड़ी धुनें जो है वो बनाते रहे। और उनका ये मानना था कि हमें विदेशों से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अपने ही पास खजाने बहुत हैं। मेरे साथ एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ये कि हमें बाहर की ओर नहीं देखना चाहिए, हमारे पास इतना कुछ है कि हम दे सकते हैं, लेने की आवश्यकता नहीं है, खासकर संगीत के क्षेत्र में। नौशाद साहब को याद किया, उनकी इस धुन को सुनवाते हुए राम और शाम फिल्म।

0: शरारतें करते, तोड़ फोड़ या किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस होते हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी माता पिता की भी बनती है। ये चर्चा हो रही है। और इसके अलावा भाई प्रधानमंत्री स्टार्मर के सहयोगी कह रहे हैं, कुछ खास जो उनके सपोर्टर वो कह रहे हैं कि उन्हें बदलने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वो काम ठीक कर रहे हैं और जो है ब्रिटेन में इस समय सरकार अपनी जिम्मेदारियों को खूबसूरती से निभा रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को बदलना ठीक नहीं है। लेकिन भाई उनके विरुद्ध भी कुछ स्वर जो है उभरे थे, वो देखते हैं धीरे धीरे शांत होते हैं या और मुखर होते हैं। इसके अलावा भाई इंटरनेशनल समाचारों में जो खबरें आ रही हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी हैव।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के फॉर्मर कमांडर मोहसिन रेजाई ने अमेरिकी नाकाबंदी को दुनिया के देशों के लिए नुकसानदायक बताया है। मोहसिन रेजाई ने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी जितनी लंबी चलेगी उतना ही दुनिया के देशों को नुकसान होगा। मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि हमारी टॉलरेंस की भी एक सीमा है, एक हद है, और हथियारबंद बल खुद को तैयार कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए खुला है लेकिन फौजी कार्रवाइयों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि अमेरिका पूरी तरह फंसा हुआ है। एक तरफ वो लड़ना चाहता है और अगले 2-3 दिनों में मैदान में उतर भी सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी फौज ट्रंप से कह रही है कि ऐसा करने से अमेरिकी फौजी पकड़े जा सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीज फायर तोड़ने की धमकियां दी हैं। सऊदी अरब ने बताया है कि उसने संडे को अपने हवाई इलाके में दाखिल हुए 3 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक्स पर बयान जारी करके बताया है कि 17 मई को 3 ड्रोन नष्ट किए गए और ये ड्रोन इराकी हवाई इलाके से होकर सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल अल मलिकी ने कहा कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री सही समय और सही जगह पर जवाब देने का हक रखती है। देश के खिलाफ किसी भी कोशिश पर जरूरी कदम उठाया जाएगा। भारत से आने वाली खबरों में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केरल के चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ ले ली है। अब 20 एमएलए यानी विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हो रहा है, जहां पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। इनके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे हुए हैं। वी डी सतीशन 6 बार के विधायक हैं, एमएलए रह चुके हैं और केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका यानी रोल भी निभा चुके हैं। बिहार से एक खबर आ रही है, वहां सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज सुबह पटना जाने वाली रेलगाड़ी की एक बोगी में अचानक आग लग गई। इस घटना में किसी भी यात्री के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के मुताबिक घटना के वक्त ट्रेन खाली थी, इसलिए जान का नुकसान तो नहीं, वहां ट्रेन में आग की कई जो बोगियां हैं वो तबाह हो गई। अमेरिका से खबर आ रही है, वहां के एक एयर शो के दौरान 2 फाइटर प्लेन आपस में टकरा गए, जिस पर ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी कौंसलेट ने घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी फौज ऐसे बेकार के ऑपरेशन में ही जीत सकती है, किसी असल लड़ाई में उसकी जीत नहीं हो सकती। दरअसल अमेरिका में यह हादसा संडे को हुआ, यहां एक एयर शो के दौरान EA-18G जेट आपस में टकरा गए, जिसके बाद 4 क्रू मेंबर्स पैराशूट के जरिए तुरंत सुरक्षित बाहर आ गए। अमेरिकी नेवी का कहना है कि जो जेट्स टकराए उनकी कीमत लगभग 7 करोड़ डॉलर यानी लगभग 672 करोड़ रुपए थी। यूक्रेन ने संडे की रात को रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। रूसी अधिकारियों ने बताया है कि हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। रूसी समाचार एजेंसी का कहना है कि बीते 1 साल की अवधि में

0: सबसे बड़ा हमला था। भारत के मॉस्को स्थित दूतावास ने यानी एम्बेसी ने बताया कि मरने वालों में एक भारतीय नागरिक भी था और 3 जख्मी होने वाले भारतीय थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है। यह ऑनर स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान है जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में संडे को ये सम्मान दिया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां इंटरनेशनल अवार्ड है, सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान के दौरान स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन समेत कई नेता वहां मौजूद थे। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक संघर्ष परमानेंटली रुका नहीं है। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जंग खत्म करने की बातचीत अटक जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर वार्निंग दी है और कहा है कि घड़ी की सुई तेजी से घूम रही है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के ताजा प्रस्तावों पर कोई कदम नहीं उठाया है। बीते हफ्ते ईरान ने अमेरिकी मांगों को खारिज कर दिया था, तभी ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि युद्ध विराम लाइफ सपोर्ट पर है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: डीजे साहब टेस्टी ट्रैक हाजिर है, स्वाद लीजिए। लौट आइए संगीत के क्षेत्र में, या यूं कहिए म्यूजिकल ढाबे पर आ जाइए और स्वाद चखिए इस मधुर संगीत का। गुड मॉर्निंग।

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और बहनों भाइयों, ये प्रोग्राम लेकर मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूं। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं और ये वक्त है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं भाई हम चिंतन के बड़े प्रेमी हैं, बड़ा सात्विक कार्यक्रम है और ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन, जिसके लिए आलेख हमें कृष्ण पहलवान और राजू मलिक ने भिजवाया है और वह स्टेन से आया है आज का विचार। तो प्रस्तुत है थॉट फॉर द डे, आज का चिंतन।

एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, अपने चेलों के साथ। गुरुजी उन्हें समझा रहे थे, जीना सिखा रहे थे। कहते थे कि भाई आज प्रसाद में हमारे पास सिर्फ रोटियां हैं, कोई सब्जी नहीं है, कोई अचार चटनी नहीं है, सादा भोजन है, तो आप इसे ही खा लो। गुरुजी सिर्फ रोटियां? एक शिष्य ने प्रश्न किया। हाँ, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। भाई भाग्य की बात है, कभी कभी प्रसाद में स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाता था। ये तो गांव वाले आकर के जो कुछ दान करके जाते, दे के जाते, उसी से आश्रम का जो है वो रसोई घर चलता था। आज सिर्फ रोटियां और वो भी सूखी हैं, क्या गुरुजी ऐसे कैसे खाएं? एक जब शिष्य ने प्रश्न किया तो गुरुजी ने कहा, ऐसा करो, रोटी का टुकड़ा तोड़ो और मान लो कि रोटी पर नमक रखा है, बस उसे लगाओ और खाना शुरू करो। आंखें बंद करके महसूस करो कि रोटी में नमक लगा हुआ है, वो और स्वादिष्ट हो जाएगी। एक लड़के ने देखा, टुकड़ा तोड़ा, आंखें बंद की और खाना का रोटी का टुकड़ा निवाला लेते हुए कहता, वाह गुरुजी वाह, बड़ी स्वाद रोटी है, नमकीन रोटी। बाकी सभी शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। मान लो कि रोटी पे नमक रखा है, बहुत सारी बातें हम मान लेते हैं फिर के अनुसार जीवन का स्वाद लेते हैं। लेकिन एक लड़का एक तरफ बैठा रहा, उसने अभी रोटी खाना शुरू नहीं किया। गुरुजी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें ये स्वादिष्ट रोटी नहीं खानी है? खानी है गुरुजी, तो फिर मान लो कि रोटी पर नमक रखा है, एक टुकड़ा तोड़ो, उस नमक से रोटी लगाओ, टुकड़ा लगाओ और निवाला मुंह में रखते हुए आंखें बंद कर लो, कल्पना करो, तस्वर में स्वाद लो। शिष्य ने कहा, गुरुजी एक बात कहूं, रोटी पर नमक तो है नहीं, अब मानना ही है। जब मानना ही है तो फिर नमक क्यों मानूं मैं, मटर पनीर क्यों ना मानूं मैं, दाल मखनी क्यों ना मानूं, जब है तो कुछ भी नहीं। लेकिन कल्पना तो कम से कम अच्छी करूं, स्वादिष्ट, मजा आ जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए, सभी बच्चों से कहा, देखा, बात सुनने की नहीं सीखने की भी है। अरे जब मानना ही है, कल्पना ही करनी है, तो छोटी क्यों करते हो, बड़ी करो, अच्छी करो। इससे पहले एक शिष्य ने सवाल किया था कि गुरुजी मेरा मन जो है वो विकारों की ओर भटकता है, घटिया बातों की तरफ जाता है, विषयों में उलझता है। गुरुजी ने कहा, मारो लात उस मन को, कहो जा खा धक्के। अरे अगर तुझे जाना ही है तो अच्छी जगह पे जा, सोचना ही है तो अच्छी सोच रख, गुनगुनाना है तो अच्छे गीत गा। हाँ बहनों भाइयों, आपकी जैसी कल्पना होगी, आपकी जैसी सोच होगी, आपका जैसा मन होगा ना, वैसा ही आपका जीवन होगा। तो मन में अच्छी बातों को जगह दें, या मन से कहें, ऐ मन मेरे तू, सांझ सवेरे तू सिमरण किया कर जरूर, अच्छी बातें सोचा कर, अच्छी कल्पना किया कर, अच्छी जगह जाया कर।

0: रे मला ले चल मुझे वहां जहां सात्विकता हो, जहां ईश्वर की अनुभूति हो, जहां आनंद हो, जहां प्रेम हो।
1: चिंतन,
0: ये था आज का चिंतन, आज का विचार, थॉट फॉर द डे। और आप जानना चाहेंगे कि भाई जो गीत सुनवाया वो कहां से लिया? वेल दैट वाज बाय कुमार विशु। संगीत बद उन्होंने किया, आवाज भी उनकी थी। लिखा था रंजीत सिंह आफताब ने। और ये तो मैं भाई कई बार बता चुका हूँ कि कुमार विशु मेरे सहपाठी रहे यूनिवर्सिटी में। हम दोनों सांझे मंच पर, मैं अभिनय करता था तो वो गाते थे। कई शो हमने साथ साथ किए थे। हम एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, MD यूनिवर्सिटी रोहतक। थोड़ा समय मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी गुजारा और वहां के तो भाई स्टूडेंट्स में नाम शामिल है गजल गायक जगजीत सिंह जी का। वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे लेकिन वो मेरे सीनियर थे, मेरे साथ नहीं थे। मैं उनसे बहुत जूनियर था उस क्लास में, वहां उस स्टडी करते हुए। तो साहब आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें राजू मलिक और कृष्ण सोलंकी शंभू ने भिजवाया स्टेन से। कहते हैं जी अब हम स्टेन में नहीं, हम अब विंडसर में हैं। भाई आपका बिजनेस तो वही है ना, आपका कारोबार और आपके ये उत्तम विचार जो कभी कभी आप चिंतन में शामिल करवाते हैं, इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों याद दिला दूं, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन भी भाई बहुत बढ़िया कह रहे हैं फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन से। और आप हैं कंचन अग्निहोत्री, आपको भी चिंतन पसंद आया, आपने भी संदेश भिजवाया, थैंक यू वेरी मच। वत्सला जी, मीरा के मोहन अवश्य मिलेंगे, शबरी के राम भी मिलेंगे, क्या बात है। तो आप का भी संदेश आया है चिंतन की प्रशंसा में, थैंक यू वत्सला जी। और भरत गंगाराम जगदीश जी बुशी से, जैस्मीन बाबा जी के दर्शन करवा दिए आपने, थैंक यू। और नलिनी आपका पैगाम चिंतन के नाम, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कहती बिल्कुल सही कहा आपने, जब सोचना ही है, मानना ही है, कल्पना ही करनी है तो अच्छी करें। मानसी थैंक यू, पम्मी स्लाव में, रागिनी महेंद्र बजारिया साउथरो में, सुनीता शर्मा थैंक यू, हरविंदर जी रेगुलर लिसनर, महेंद्र पटेल क्रोडन वाले, नीला चौधरी जी आपका भी साथ निरंतर है, चिंतन होता है और आपका संदेश सामने स्क्रीन पर होता है। हिना उल्लास टोरंटो में, एजाज चैशम में, शौकत हुसैन भाई कैसे हैं आप? कहते हैं आज मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं भाई, रोज सुना करो, थैंक यू, हम मिस करते हैं आपको शौकत भाई। रंजन जी थैंक यू, हंसा बोरा, मृदु तमे सांभळो छो, गुड मॉर्निंग। मधु सुन रही हैं हमें, इमरान सुन रहे हैं, अरुणा जी थैंक यू वेरी मच। और भारत में आप कौन हैं? भारत से आया है हितेश पटेल का पैगाम। भाई हितेश आप भी जुड़े रहते हैं हमारे कार्यक्रमों के साथ। देखिए हम किसी के काम में रुकावट नहीं बनते हैं, सहायक बनते हैं। इसलिए आप काम कुछ भी कर रहे हो, बस साथ साथ रेडियो सुनते रहे, हम आपकी स्फूर्ति को और बढ़ाएंगे, आपकी एनर्जी को और जागरूक करेंगे। अनिल सोनी हमें वियाना में सुनते हैं, नैना शाह यहाँ लंदन में सुनती हैं। और आप कहाँ सुनते हैं जी? वजाहत हाशमी भाई कैसे हैं आप? साथ जुड़े हमारे थैंक यू वेरी मच। और बहनों भाइयों जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबका धन्यवाद करते हुए और लोगों को भी जोड़ें ये रिक्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का चिंतन, आज का विचार अब समेटते हैं, चिंतन समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
0: नोट कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ताजा रेट भाई एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 128.2 रुपीज, 128 रुपए और 20 पैसे का रेट चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर आप पैसे हिंदुस्तान भिजवाना चाहें तो भाई ये भेजने के लिए यू कैन सेंड वाया ब्रांच ऑनलाइन और भाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट SBIUK.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। Like a radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99।
3: हमजा समोसास 3 for 10।
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
3: सुहाना मसालास 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
3: केसर मैंगो पल 149। फूल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
3: While stocks last.
2: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
5: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
5: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-393-5757. Greens by Daniel. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
12: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
13: जगदात्री,
12: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
13: माला ले आना, लाया जी।
12: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
14: टीम, get ready for the action।
12: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 बजे ZTV HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
15: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ ना कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116 332 5100। एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सवे में तो है, अब लेस्टर में, जहां हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
16: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way, just like you. So use your mirrors. Check before you maneuver. And be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety. It's on all of us. National Highways.
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
17: Leica Radio.
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

आजकल याद कुछ और रहता नहीं, उम्र का तकाजा है भाई। होता है ऐसा। आप मेरी तरफ शक की नजर से ना देखें, होता है, सभी को होता है भाई ऐसा। अब आप पूछेंगे भी आपके साथ क्या हुआ, कितनी देर तक मैं अपना चश्मा ढूंढता रहा, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि नहीं, मेरा मतलब है कि भाई गाड़ी चलाते हुए चश्मे की जरूरत पड़ती है, वैसे नहीं, पढ़ने के लिए नहीं जरूरत पड़ती। अब मैं कितनी देर से चश्मा ढूंढ रहा हूँ, घर में चश्मा नहीं मिल रहा है। अगर फिर पत्नी को भी लगा दिया तलाश करने पर, फिर जब पत्नी के सामने आया तो कहती है, जी शर्म करो, चश्मा ढूंढ रहे हो, आपने

0: चश्मा आंखों से ऊपर कर लिया, माथे पर रखा लगा रखा है। क्या कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में चाबी हो और आप चाबी तलाश कर रहे हो, कहाँ है चाबी, कहाँ है चाबी? अरे उंगली में झूल रही है, आपके साथ घूम रही है चाबी, लेकिन चाबी की तलाश जारी है। ऐसा होता है। और कभी कभी आपके सामने चीज रखी होती है और आपको सूझती नहीं, नजर आती नहीं, और आप परेशान तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई काले रंग की टेबल और उस पर काले रंग का आपने कोई गुच्छा रख दिया, कोई पर्स रख दिया, कोई ऐसी चीज रख दी, वो कभी कभी मिक्सअप हो जाता है। लेकिन ऐसी उलझन आजकल याद कुछ रहता नहीं, बस एक आपकी याद आने के बाद आप आ जाइए, मेरी चीज ढूंढवा दीजिए, उसके बाद जाइए जहां मर्जी।
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. This is the Leica Radio network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर सुपरहिट गीतों के भाई प्रदाता रहे हैं दोनों। और ये गीत था फिल्म प्यार का मौसम से। प्यार का मौसम आया जब जब ये गीत सुनवाया। स्टाइल से लगता है संगीत जरूर पंचमदा का यानी आर डी बर्मन साहब का रहा होगा। भाई सामने नहीं लिखा है, अंदाजे से बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आर डी बर्मन का संगीत है। रफी साहब और लता जी की आवाजें हैं। प्यार का मौसम फिल्म का गीत आपने सुना और किसने सुनवाया?
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a radio.
5: Like a extra podcast update.
0: और भाई एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पर जो है लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड जो है आजकल लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं। दिस इज इंडिया वीक शोकेस होस्टेड बाय अनुज राडिया और टॉकिंग पॉइंट्स जो है उसके कई ऐसे हैं जो आप तक पहुंचाने के लिए संदेश के लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26th to 31st May। तो पहले हमारा ये एपिसोड देखिएगा एपिसोड 16 और उसके बाद भाई इंडिया वीक के भी हिस्से बनिएगा। जो हमारे पिछले एपिसोड्स हैं वो भी वहां पर उपलब्ध हैं। वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, होम स्कूलिंग डिबेट, विल्स एंड प्रोबेट, यू कैन वॉच देम। और भाई ये अवेलेबल हैं ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल and other major streaming platforms, you can see them.
5: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
6: Yeah. Leica Radio.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
10: No more worries for me or you.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Frankie Goes to Bollywood is back. Bigger, bolder and more dazzling than ever. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dance sequences, heroes and villains, lavish costumes and sweeping sets. This is the story of being British in Bollywood. With brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand, this show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surrender Ella, Frankie Goes to Bollywood comes to the New Theatre Peterborough 5th to the 9th of May. For tickets and more info, click newtheatre-peterborough.com. Radio partner Leica Radio.
13: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
14: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
13: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
14: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
13: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
14: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
13: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। भाई प्राइम मिनिस्टर की टॉप टीम का एक सदस्य कह रहे हैं कि उनके लिए रिजाइन करने का कोई टाइम टेबल सेट नहीं है, पर उन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेट्स फाइंड आउट।
1: Across the Midlands on DAB Digital Radio. This is Leica Radio, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. One of the Prime Minister's top team insists there'll be no timetable for him to resign.
3: Keir Starmer remains the most resilient person I know in my life. He has a strength of character, a fighting experience. There will be no timetables. What there is getting on with the business of government.
2: Deputy PM David Lammy insists Sir Keir Starmer will not step down. His potential leadership rivals have clashed over Brexit. Former Health Secretary Wes Streeting signalled he'd stand in any contest and wants Britain to return to the EU. Andy Burnham, who hopes to stand in the Makerfield by-election, has insisted he's not campaigning on that issue. It's understood a number of Americans have been exposed to the Ebola virus in the Democratic Republic of Congo. The World Health Organization has declared the outbreak an emergency of international concern, but have stopped short of saying it's a pandemic. It's reporting at least 80 suspected deaths and more than 240 cases. Our Africa correspondent Yusra Elbagir says the strain is proving difficult to manage.
4: This Bundi Bajau variant is not only very fatal, but it also has a slower detection time beyond the 6 to 8 hours that is expected of the Ebola virus. So that again, so you've got all these variables that make it very difficult to contain.
2: A 12-year-old boy is in a serious condition after a car crashed into pedestrians in Alloa yesterday afternoon. Four other people were injured on the A907. The MV Hondius cruise ship has docked in Rotterdam to allow the final crew off to quarantine. Three people who were on board the liner died after contracting hantavirus. Former Google boss Matt Britton has arrived for his first day as the Director General of the BBC. He says the world needs the corporation more than ever. And Ryanair insists its prices will remain broadly flat over the summer, despite uncertainties around jet fuel availability. The airline says the amount customers pay is unlikely to change drastically. From Sky News, I'm Imani Rana.
1: Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। भाई सुबह की जो थोड़ी बहुत धूप की चमक दमक थी वो बादलों से ढक जाएगी, लेकिन शाम होने से पहले फिर भी छुटपुट रूप से सूरज की किरणें धरती पर पहुंचती रहेंगी। शाम को मौसम ज्यादा ड्राई रहेगा और सनशाइन ज्यादा मिलेगी, और साहब रात को भी आसमान साफ रहने की ज्यादा संभावनाएं हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में भी और मिडलैंड में भी आज 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand. Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. This is Leica Radio across the Midlands.
5: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica
1: Radio. Leica Radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is Leica Radio across the Midlands.
0: स्वागत है आपका प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में। आइए ले चलते हैं आपको एक शादी की धूमधाम में। अरे कोई बात नहीं, घुस जाएंगे इतना कनात उठा के। लेडीज गीत संगीत में बिजी हैं, मर्द लोग व्यवस्था कर रहे हैं, खाना वाना बन रहा है, तंबूल लगे हैं, साउंड बैग गूंज रहा है। ऐसे में कौन पूछता है कि भाई आप शादी में किस तरफ से हो, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से। हम तो अपनी तरफ से हैं जी। थ्री इडियट्स में देखा था ना वो। आइए पहले संगीत का मजा लेते हैं फिर खाने का।

0: संग
1: शम्मी कपूर, भाई उनकी अदाएं, उनकी भूमिकाएं, उनके संवाद लोग याद करते हैं। एंड इस सप्ताह आप उनकी फिल्मों के बहुत सारे गीत सुन पाएंगे। ही इज द आर्टिस्ट ऑफ अ बीवर।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार, फिल्म तीन देवियां का गीत आप सुन रहे थे उनकी आवाजों में। और भाई जब मेरी चुनरिया मलमल की तो मैं क्यों ना फिरूं झलकी झलकी। अभी पता चला कि भाई वो रिच लोगों की लिस्ट प्रकाशित हो गई है, धनवान लोगों की सूची, ये भाई रेगुलरली छपती है यहाँ, और उनमें लोग मेरा नाम ढूंढ रहे हैं। मैं बता दूं कि मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि क्या होता है कि नाम छपता है फिर बंदा मशहूर हो जाता है, फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं कि वो उधार मांगने वाले। नहीं, मुझसे उधार नहीं मांगने वाले, अपना उधार वापस मांगने वाले। रिच लोगों की लिस्ट में भाई नाम तो मिलता है हिंदुजाज का। और ये जो धनवान व्यक्ति होते हैं ना भाई, ईश्वर करे वो धनवान भी हो, मनवान भी हो और सुखवान भी हो, ऐसी प्रार्थना हमारी। लेकिन आम तौर पर धन जो है सुखी नहीं बनाता, संतुष्टि सुखी बनाती है। ओड़ो ओड़ो, अब मलमल की चुनरिया है तो घूंघट ओढ़ने का फायदा क्या, सब नजर आएगा देखना। झलकी झलकी घूमने दो इसे। Feel good track.
1: Brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और भाई वो अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास कही या मल मास के कई नाम हैं, एक एक्स्ट्रा मंथ आता है भारतीय कैलेंडर में और इसी कारण वो सारा बैलेंस रहता है। भाई ये काल गणना का काम भारतीय संस्कृति में बहुत पुराना है। जैसे ये लोग हर चार साल में एक दिन एक्स्ट्रा रखते हैं ना, इंग्लिश कैलेंडर वाले, और दुनिया भर के और भी कैलेंडर हैं भाई जगह जगह, लेकिन भारतीय कैलेंडर में एक अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। उसका धार्मिक महत्व भी है और काल यानी समय की गणना के अनुसार कैलकुलेशन जो है वो उसकी बिल्कुल सही बैलेंस में रहती है। तो हर मौसम जो है वो अपने उसी महीने में आएगा, हर त्योहार उसी महीने के आसपास जो है अंग्रेजी के हिसाब से भी आएगा। और इसलिए आपको बता दें कि आजकल अधिक मास चल रहा है, लोग उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और ऐसे में बहुत सारे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं कि ये पुरुषोत्तम मास सचमुच आपके लिए उत्तम साबित हो। एक और सूचना आप तक पहुंचाएं भाई, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द मिथोलॉजिकल शो हमारे राम, स्टारिंग बहुत प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा, वो रावण के रूप में आएंगे और राहुल बुचर भगवान श्री राम की भूमिका में होंगे। और ये 9 से 12 जुलाई के बीच लंदन के एवेंटिम अपोलो में प्रदर्शित किया जाएगा ये नाटक, ये नाटिका। और इसके अलावा भाई ये भी बता दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड द पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स at laikaradio.com.
2: This is Laika Radio.
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

प्यार का सलाम लेते जाना। नमिता कहती है जब जाने की बातें करते हो ना आप, ऐसा लगता है जैसे आप हमसे विदा लेने की तैयारी कर रहे हो। प्रोग्राम समाप्ति पर ऐसा गीत सुनवाते हो कि हम भी अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं कि भाई अब रवि जी जा रहे हैं, कल लौट के आएंगे। अच्छा लगता है। थैंक यू नमिता, सुनते रहिएगा। और भाई अर्जुन जी कहते हैं अधिक मास यानी पुरुषों

0: उत्तमा, इसकी महिमा तो भाई बड़ी मशहूर है। ये महीना जो है बहुत उत्तम है, सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: ये है
1: Leica Radio.

इस गीत के प्रोड्यूसर, इस गीत के भाई निर्माता विदु साहब से मुलाकात हुई थी। इस गीत ने उन्हें इतना फेमस बना दिया। हालांकि उन्होंने अपने संघर्षों की भाई गाथा भी सुनाई कि कैसे वो भारत के बेंगलुरु से निकल करके स्ट्रगल करते हुए कई देशों का दौरा करते हुए यहाँ पहुंचे थे ब्रिटेन में, और यहाँ अब जब उन्होंने संगीत क्षेत्र में अपनी धूम अपनी अपना लोहा मनवाया, धूम मचाई, तो साहब नाजिया हसन की आवाज में ये गीत सुनाकर उन्होंने विश्व रंगमंच पर अपना नाम

0: डिस्को संगीत भाई उन दिनों बस यूं समझिए कि बहुत लोकप्रियता के शिखर पर था। और ये गीत हम उनके नाम कर देते हैं जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं या शादी की सालगिरह मना रहे हैं या कोई और उत्सव उनके जीवन में है। वैसे आपको बता दें भाई, आज जन्मदिन पुणे में मना रही हैं शिवांगी जोशी। ये एक अभिनेत्री हैं, एक और एक्टर हैं जो सीरियल्स में काम करते हैं, जैन इमाम। तो भाई उनका भी आज जन्मदिन है, वो भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन साहब आज जन्मदिन मनाने वाला मैं अगर दुनिया में होते तो मना रहे होते। नाम सुना आपने हरदन अली? नहीं, हरदन अली एच डी देवगौड़ा साहब भारत के प्रधानमंत्री थे कुछ बरस पहले, और आई थिंक ही वाज 11वें प्रधानमंत्री थे भारत के, प्राइम मिनिस्टर साउथ से बनने वाले। आई थिंक ही वाज द उनसे पहले नरसिंह राव भी रह चुके थे। तो उनका जन्मदिन पड़ता 1833 में, जन्मे थे 18 मई को। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद में आज ही के दिन जन्मे थे 1969 में। अब आप कहेंगे रॉबर्ट वाड्रा कौन है? अरे भाई, सोनिया गांधी जी के दामाद और प्रियंका गांधी के पूज्य पतिदेव प्रियंका वाड्रा के, तो उनका भी आज जन्मदिन है। थावरचंद गहलोत एक राजनेता हैं, भारतीय राजनीति में मंत्री हैं। यही वाज बोर्न इन 1948। और साहब आज के दिन के साथ जुड़ी है एक और घटना, सोचिए आज के दिन भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण किया था। पूरी दुनिया में चर्चा हुआ था कि कैसे दुनिया भर के भाई बड़े बड़े देश जो हैं, जो परमाणु से शक्ति से संपन्न हैं, वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा परमाणु हथियार बनाए या परमाणु शक्ति से जो है वो संपन्न हो, और इसीलिए ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है। लेकिन ऐसे में बरसों पहले भारत ने बिना किसी को खबर दिए, बिना किसी को पता भी नहीं लगा, भनक तही नहीं लगी, और भारत ने वो परमाणु परीक्षण किया। करने के बाद दुनिया में खलबली मची, और भाई वो जमाना था मिसेस गांधी का, इंदिरा गांधी, उन्होंने पोखरण में वो स्माइलिंग बुद्धा नाम था उस परीक्षण का, वो इसलिए कि बुद्ध जयंती के दिन वो हुआ था, और बड़ा कामयाब परीक्षण हुआ। उसके बाद भारत की पहचान न्यूक्लियर देशों में एक शक्तिशाली देश के रूप में हुई। आपको बता दें कि ये जो परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर परीक्षण होता है ना, एक्सपेरिमेंट होता है, ये सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग ही नहीं होते, वे किसी देश की सिक्योरिटी, ताकत और टेक्निकल कैपेबिलिटी के सिंबल भी माने जाते हैं। पोखरण 2 जैसे परीक्षणों ने भारत को दुनिया की स्टेज पर, विश्व मंच पर एक नई पहचान दी थी। और बाद में तो भाई कई बरस बाद तो जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया भारत ने, तो पाकिस्तान ने भी किया, और कई बार वो बातों बातों में धमकियां भी देते हैं कि हमारे पास पाव पाव के परमाणु बम हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें धमकी देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने पास परमाणु बम होना ताकत का प्रतीक तो है ही, लेकिन ये लड़ाइयों को रोकता भी है, ये एक डिटरेंट बन जाता है कि इनके होते हुए कोई भी देश जल्दी से जंग नहीं करता है, एक वो रहता है इससे। और परमाणु ऊर्जा, वैसे ये जो एनर्जी होती है चिकित्सा एंड मेडिकल फील्ड में, और अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी फायदा पहुंचाती है। लेकिन साहब इनकी चिंताएं भी हैं, पर्यावरण प्रदूषण यानी और ह्यूमन हेल्थ पर खतरा, हथियारों की दौड़ को बढ़ावा, विश्व शांति पर संकट, ये भी परमाणु हथियारों के निर्माण से ये खतरे बढ़ते हैं। खैर साहब, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट 18 मई 1974 में किया था।
1: अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Radio. currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और आपको बता दें कि LemFi के रेट्स यूं हैं, एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी में दे आर गिविंग 128.82 रुपीस, पाकिस्तानी 372.82, श्रीलंकन 438.17, बांग्लादेशी टके 164.34 और अफगान अफगानी 85.18.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: The gold is sold at the rate of 109.36 pounds per gram.
2: Ram Jewellers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. India Cricket Score Updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: और आपको याद दिला दें भाई, IPL का जो आज का मुकाबला है वो खेला जाएगा दो साउथ की टीमों के बीच. चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर इन चेन्नई. तो मैच दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा. स्कोर के आंकड़े आपको वो अगला प्रोग्राम कौन पेश कर रही है वो बताएंगी.
3: मैं.
0: आप कौन है मैडम?
3: मैं सरिता
0: अग्रवाल. सरिता अग्रवाल
3: सबरवाल. ओए भूल जाते हो भुलक्कड़, हर चीज भूल जाते हो.
0: मुझे सब याद रहता
3: मैं
0: है.
3: मैं बताऊं लोगों को कि क्या क्या भूल जाते हो. हमेशा अपना वॉलेट भूल जाते. ये तो मैं
0: वो तो अपने भाई रिचार्ज
3: मैं तो
0: धनवान आदमी
3: औरत हूँ. मैं बता देती हूँ कि रवि जी आपका वॉलेट
0: नहीं बता देती हूँ लेकिन वापस तो नहीं करती ना. ये बात क्या है कि धनवान लोगों की निशानी है. यहाँ पर रिच लोगों की लिस्ट पढ़ो. बड़ी मुश्किल से मैंने अपना नाम कटवाया उसने.
3: नहीं रवि जी सच्ची में भूल जाती हूँ. आप बहुत दफा अपना टेलीफोन तो मैं कितनी दफा दे के आती हूँ बाहर की.
0: हाँ तो और लोगों को दे आती हूँ ना. मेरा फोन मुझे वापस किया करो ना आप. सरिता सबरवाल विल बी योर होस्ट आफ्टर 1 o'clock न्यूज सिटिंग इन फॉर बाली भाई. भाई ये बात सही कर रही है सरिता कि मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ, बहुत चीजें भूल जाता हूँ. क्या करें साहब. बताते पहले तो ये क्रिकेट का संदेश सुना दूं, पहले यही ना भूल जाऊं.
2: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे. Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA.
0: जो कुछ भूलता हूँ ना वापस मिल जाता है किसी न किसी तरह से. आप यकीन नहीं करेंगे. एक बार बहुत तो फोन तो मैं 5-6 बार गुम कर चुका हूँ और सब फोन वापस मिल गए. एक बार तो साहब 7 दिन बाद मिला, एक बार 3 दिन बाद मिला. क्योंकि उसकी लोकेशन तो होती है मेरे पास. ढूंढता ढूंढता सूंघता सूंघता मैं पहुंच जाता हूं वहां. और कई बार तो भाई लोग खुद पहुंचा देते हैं. पता नहीं कैसे उसकी पॉकेट में, फोन की वो छोटी सी पॉकेट में कोई ऐसी चीज मिल जाती है, उन्हें पता लग जाता है रवि शर्मा का देने घर आते हैं. क्या बात है. मैं भाई अपना एक बार टिफिन भूल चुका हूँ, अपनी स्टिक भूल चुका हूँ, पर्स तो कई बार भूला हूँ, फोन कई बार भूला हूँ. लेकिन यकीन मानिए क्योंकि ईमानदारी की कमाई है भाई, शरीफ आदमी, इसलिए जितनी चीजें गुम की हैं सब वापस मिल गई. एक बार प्लेन में मैं अपना फोन छोड़ आया था, हवाई जहाज में, वो भी मिल गया.
2: LIKA Radio.
4: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises
4: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-396-3-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Leicester, it's time to celebrate.
9: Rouge Millers brings you the ultimate 50 fest.
8: 50 days of giveaways worth a huge £50,000. We're talking gold coins,
9: LED TVs, designer saris, and over 50 luxury hampers up for grabs.
8: Shop and you're automatically entered into our lucky draw or discover hidden vouchers as you go.
9: Plus, instant rewards on fresh fruit and veg. Spend £5 and get a free hand wash.
8: £10 for a food chopper. £25 for a teapan or kadhai pan.
9: Rouge Millers, Melton Road, Leicester. 50 fest. Every shopper's a winner.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka formula hai 0208890880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Ragasan.
12: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
13: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
12: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
13: Or sales at leicamedia.co.uk.
14: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
2: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.

0: प्यार का फासला फिर भी है दिल की करीबियां। देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392, इंडिया टीवी, प्रेजेंटेड बाय TravelUp.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स।
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
6: चलो सजनों,
7: चलने का समय हो गया।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए होंगे। पहला गीत था 1942 अ लव स्टोरी से, मनीषा कोइराला एंड अनिल कपूर ने इस फिल्म में काम किया था एंड इसका संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने। और दूसरा गीत मैंने फिल्म दर्द से चुना, 1981 की फिल्म थी एंड खयाम साहब का था संगीत एंड ये दर्द आई थी 1981 में, जिसमें काम किया था हेमा मालिनी एंड राजेश खन्ना ने और पूनम ढिल्लन भी थी। राइट, ये तो फिल्म की इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने और अब जरा आपसे जान लूँ कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, द कम ऑन, चेयर अप। लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाती है सरिता आप ही के लिए। आपके मन को भा जाए तो आपकी तरफ से मुझे इशारा चाहिए। वैसे बहुत सारे इशारे मिल चुके हैं, थैंक यू एवर सो मच। मुझसे पहले ही आप चले आते हैं वेलकम करने के लिए, लेकिन मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका खैर मकदम है। अब जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और ये भी जान लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to कितने पैसे, 128 रुपीस एंड 15 पैसास। और सेंड मनी टू इंडिया वाया एसबीआई योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इनटू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी वीक व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds, आल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds। वाओ, बहुत अच्छी डील है, तो देर मत कीजिएगा, आप जाएं और पैसे ट्रांसफर जरूर कराइएगा। एंड TNC अप्लाइज, ये मैं आपको साथ में बता दूं, जितना बड़ा अमाउंट होता है उतना ही अच्छा रेट मिलता है।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later, all at all protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly, fly more, pay less.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 lbs सिर्फ 24.99,
4: हमजा समोसास 3 for 10,
5: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
4: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
5: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
4: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
4: Last.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
7: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
3: T's and C's apply.
10: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham.
11: Where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
10: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
11: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
10: For sponsorship and details, call 07803 633926.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
13: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02039
6: 5757. Greens by Danube. Prime location.
14: High appreciation.
6: In Dubai.
15: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
16: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
17: Atif Aslam, live in the UK.
18: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
19: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
20: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
21: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
22: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या हुआ,
1: क्या अंदाज था राजेश खन्ना का। व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म। अमर प्रेम से चुना था मैंने इस गीत को। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी ने कमाल किया था इस फिल्म में। आर डी बर्मन साहब का संगीत आपने सुना और ये गीत आप तक पहुंचाया।
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: और जहाँ भी बैठे आप सुन रहे हैं अपने होने का मुझे एहसास दिला रहे हैं। थैंक यू एवर सो मच। अगला गीत भी आप जरूर पसंद करेंगे फ्रॉम द फिल्म अभिलाषा।
2: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
1: ये लता जी एंड किशोरदा की आवाजें। और बता दूं कि आज के नेक्स्ट आवर में आप सुनेंगे रीमा लागू जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और कुछ एक गीत जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया।

0: कभी कोई दिल में एक दफा आ जाए तो कहाँ जाता है, वो तो बस सपना होकर रह जाता है, होता है ना ऐसा ही। आपके साथ भी जरूर ऐसा ही हुआ होगा।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: This is Leica Radio across the Midlands. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Baden weekdays at 4 p.m.
0: जी हाँ, आपके पूरे दिन का इंतजाम हमने किया हुआ है, अच्छे अच्छे गीतों के साथ आपका मनोरंजन करते हैं और पुरानी यादें ताजा कराते हैं। बताइए क्या है गीतों में, कौन सा वर्ड बार बार सुनने को मिल रहा है, पता चला?

0: इस गीत के जरिए हमने याद किया रीमा लागू जी को. शी स्टार्ड इन एक्शन ड्रामा फिल्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुमराह में 1993 एज श्रीदेवी's मदर हु वाज ओनली 5 years यंगर देन हर. Can you believe it? Her Gumrah was the 7th highest gross film of the year at box office. और जय किशन में अक्षय कुमार की मदर का रोल किया था. रंगीला में उर्मिला मातोंडकर का, ये दिल लगी, दिल वाले, रंगीला, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, वास्तव, बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया. एंड वास्तव में जो रोल था इन दिस रोल दैट won her a 4th Filmfare Award for Best Supporting Actress. And Reema Lagu played the mother of a gangster played by Sanjay Dutt, aapko yaad hoga. And she has been credited in the media as a coming of a new age mother in Hindi cinema. So, bahut si filmon mein inhone kaam kiya as a mother. To main zyada geet nahi, lekin un filmon ke kuch ek geet shamil kar rahi hu. Umeed karti hu aapko pasand aa rahe hain. Ye geet आप तक पहुंचाया था किसने?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: भी ऐसा माना जाता है कि रीमा लागू वॉज अ ट्रू प्रोफेशनल एंड शी वॉज शूटिंग फॉर द टीवी शो नामकरण जस्ट आवर्स बिफोर शी पास्ड अवे इन 2000.

0: गीतों के जरिए रीमा जी को हमने याद किया, हु वॉज अ प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल इंडिविजुअल, लास्ट मिनट तक काम करती रही. रीमा लागू वॉज जस्ट एन एक्ट्रेस, शी वॉज एन इमोशन. हर वॉर्म्थ, हर ग्रेस एंड हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन प्रेजेंस कंटिन्यू टू लिव ऑन द हार्ट ऑफ मिलियंस. एंड रीमा लागू हैड बीन शूटिंग फॉर द टेलीविजन सीरीज नामकरण टिल 7 PM ऑन 17th of May 2017 आफ्टर शी कंप्लेंट ऑफ अ चेस्ट पेन लेटर दैट नाइट एंड शी वॉज टेकन टू कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानीज हॉस्पिटल इन मुंबई एट 1 AM एंड शी डाइड एट 3:15 AM विद कार्डियक अरेस्ट. एंड एट द टाइम ऑफ डेथ शी वॉज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग परफेक्टली फाइन एंड हैविंग नो हेल्थ इश्यूज. हर फ्यूनरल वॉज परफॉर्म्ड बाय हर डॉटर एंड हम यही कहेंगे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. और उम्मीद करती हूँ जो गीत मैंने शामिल किया आपने पसंद किए, ये गीत आप तक पहुँचाया.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे. अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर.
0: जी हाँ, जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ मैं कि कॉलिंग ऑल द किशोर कुमार फैंस, आप ध्यान से सुन ले. स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रानी, संजय एंड द 515 बैंड एंड इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th June एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में है. ये एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो.
2: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Extra Podcast Update.
0: राइट, आपको बता दें कि इस वक्त इस बारी के एपिसोड में क्या है. इंडिया वीक शोकेस होस्टेड बाय अनुज राठिया एंड लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक एंड फ्रॉम कब से 26 मई से लेकर 31 मई तक. एंड अगर पुराने एपिसोड्स आप देखना चाहते हैं तो एपिसोड्स हैं वेडिंग एंड बियॉन्ड के बारे में, होम स्कूलिंग डिबेट, विल एंड प्रोबेट. एंड लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट कहाँ मिल सकता है आपको? ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल पर एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर.
3: ये है
2: लाइका रेडियो.
3: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
4: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises
4: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: नहीं, समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा, तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।

0: भाई बहुत से लोगों को देखा है कसम खाते हुए, किसी ने पता नहीं किसी की आंखों की कसम कभी खाई या नहीं, बालों की कसम खाई या नहीं खाई, अगर खाई है तो मुझे बता सकते हैं। अभी अभी हमें जगतार जी ने ज्वाइन किया वैंकूवर कनाडा से, और बहुत से मैसेजेस हैं। निर्मला जी आप ही आए, विजय गुजरी जी, मनु जी, भारती जी, उल्लास इन टोरंटो, विजय गनोवा जी, हंसा बोरा जी, प्रतिभा जी, दिनेश जी एंड इजाज फ्रॉम चश्म, मानसी जी, अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल जी एंड राजेश जी आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, सलमा इन मेड्स टर्न, अर्जुन जी, विनी विनोद एंड वरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कौन हैं, आप ने नाम नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, आपके टेलीफोन की लास्ट 3 डिजिट्स हैं 417। अरुणा जी, महेंद्र बरजारिया जी इन साउथ हैरो सहर, मृदु पमीस जी इन स्लाव, आप सब बड़े प्यार से मेरा साथ दे रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। जिनके नाम रह गए हैं आई एम सो सॉरी, पर उम्मीद करती हूँ अब तक का प्रोग्राम आपने इंजॉय किया। प्रोग्राम के लास्ट आवर में हम कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी है, कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और बहुत ही प्यारा सा गीत जो बड़े अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में शामिल हो रहा है, जरूर सुनिएगा और सुनते रहिएगा।
1: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
2: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
1: हमजा समोसास 3 for 10,
2: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
1: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
2: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
1: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
2: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
1: While stocks last.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
6: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
11: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
10: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
12: LEMFI means quicker and safe way to send money.
13: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
12: LEMFI means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
13: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LEMFI. Download the LEMFI mobile app today.
14: LEMFI is registered by the FCA. T's and C's apply.
15: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
16: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE392.
17: Presented by South Hall Travel, powered by Data T Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
18: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
19: Seven stations,
18: one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. This is Leica Radio across the Midlands. Another huge giveaway is coming. Leica Radio Network.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ.
1: Did you know that Laika Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Laika Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
2: और इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट हैं शम्मी कपूर जी, जिन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया. तुमसा नहीं देखा से लेकर चाहे वो जानवर हो, प्रिंस हो, ब्रह्मचारी, कश्मीर की कली, राजकुमार, कोई भी. मैंने जो गीत चुना है वो है ये.
3: प्यार

0: पीछे गुजरी जी कहती हैं एल्विस प्रेस्ले ऑफ बॉलीवुड. यस डेफिनेटली. दिल देखे देखो फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को. 1959 में आई थी ये फिल्म. आफ्टर द सक्सेस ऑफ तुमसा नहीं देखा इन 57 शमी कपूर को इसी तरह के रोल मिले और खूब इन्होंने सभी को नचाया भी और अच्छे अच्छे गीत भी इन पर बहुत सारे पिक्चराइज हुए रफी जी की आवाज में.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: चलिए देखें धर्मेंद्र जी हेमा जी के बीच में क्या चल रहा है ये.

0: आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी साहब की आवाजें, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड तुम हंसी मैं जमा का टाइटल ट्रैक था, और पहले फिल्मों में हमेशा टाइटल ट्रैक सुनने को मिलते थे। और म्यूजिक की बात करें तो शंकर जयकिशन का संगीत दूर से पहचाना जाता, आर डी बर्मन साहब का हो तो भी पहचाना जाता है, एंड कल्याण जी आनंद जी का हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सबके संगीत अलग अलग और वो पहचान बन जाती थी उनकी। लेकिन आजकल कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि नए गीत जो हैं वो कॉपी होते हैं ज़्यादातर, है ना, ऐसा ही होता है। एनीवे, ये गीत आपने सुना, पिक्चराइज हुआ था धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी पर। गीत सुनते सुनते हमारी मिसेस शेख का मैसेज भी मुझ तक पहुंच गया। मिसेस शेख सुन रही हैं बड़े प्यार से, अमरजीत जी आप सुन रही हैं, तोची जी आप भी बड़े प्यार से सुनती हैं, इंतजाब थैंक यू आपका भी, इसी तरह से सुनते रहिएगा, अगला गीत भी आपके लिए।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जी हाँ, ये गीत था अगर डेरी वैली की तरफ से, तो अगला गीत आ रहा है कोका नूडल्स की तरफ से।
1: LYCA. This is Laika. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Asian stations.
1: CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे CTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
4: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803-EE392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Ye hai Leica Go.

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash and Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 0208574 8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
5: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
4: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
6: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
7: Mantra Holidays.
8: What's your travel mantra?
9: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
10: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. That's 0203-773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से।
12: अनुपमा मंडे टू संडे एट 8:30 PM ओनली ऑन उत्सव प्लस। उत्सव प्लस, स्काई चैनल 705, वेजी मीडिया 803 एंड EE392।
13: प्रेजेंटेड बाय साउथ हॉल ट्रैवल, पावर्ड बाय टाटा टी प्रीमियम एंड वेल मैन एंड वेल वुमन बाय वाइटा बायोटिक्स।
14: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
15: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com। फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
16: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
15: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
9: दिस इज द लार्जेस्ट कमर्शियल एशियन रेडियो नेटवर्क इन द UK।
17: इट वॉज जस्ट अनदर डे, अ फेमिलियर ड्राइव through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions. Especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
18: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
9: Radio Wally's Roller Coaster with Radio Wally on Leica Radio Midlands. This week's number one on the Leica Radio Network Chart Show. Tune in every Saturday at 4 PM with Niraj across the Leica Radio Network.

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: It's time for you to take over the airwaves with Radio Wally.
2: Like a radio.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's are apply.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
1: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
7: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
9: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
8: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स.
9: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
5: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
10: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
11: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
12: खुद से भी ज्यादा.
10: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
12: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
10: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
13: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
5: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी. मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं. थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू मम्मा. Magical moments.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त